फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले, जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में।

हो क्यों अफसाना, ये दिल का राज है दिल में रखो दिल पर मेरे जाना, मेरे दिल पर मेरे जाना। ना रूठो ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणे।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुद को पहचानने का ये सफर हम काफी अच्छी तरह से तय कर चुके हैं, पहचाना खुद को और उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया हमने जिसके थ्रू हमारे तक ये ज्ञान आ रहा था। अब बात आगे बढ़ती है कि मैं जो सोचता हूं उससे मेरी आगे की जिंदगी जो है वो सही हो सकती है, लेकिन जो मेरे आसपास हो रहा है क्या उसका भी मुझ पर असर होता है। ऐसी कई और बातें हैं जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई अभी भी बाकी हैं। तो चलिए एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं और हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और लम्हा लम्हा उसमें अगर हम रह पाए तो उसे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पूरी कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, इसमें मेरे आसपास जो हो रहा है, खासकर मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं क्या है, वो भी तो बहुत डिपेंड करता होगा। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
1: सबसे पहले जब हमने थॉट्स टू डेस्टिनी का साइकिल देखा था तो हमने देखा थॉट्स

0: इस बेसिस पर क्रिएट होते हैं. थॉट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फॉर्मेशन दैट वी टेक इट. इन्फॉर्मेशन अर्थात इन कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी अंदर हम लेते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, वो इम्पल्स थॉट्स पर इफेक्ट करता. और इस मुख द्वारा जो कुछ हम खाते हैं अंदर, वो भी मन पर इफेक्ट करता है. दैट्स अ फैक्टर विच वी डोंट रियली पे टू मच अटेंशन टू. लेकिन वर्तमान समय, क्योंकि साइंस हमेशा रिसर्च करके हमारे सामने नई नई बातों को रखती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट जो अब इंडस्ट्री में आया है, स्पेशली इन द हेल्थ इंडस्ट्री, इट सेज यू आर व्हाट यू ईट. यू नो, यही बात और डीपर लेवल पर हमने इंडियन कल्चर में शुरू से ही सुनी कि जैसा अन्न वैसा मन. तो अगर हमें प्योर मन चाहिए जिसमें से नेगेटिविटी इम्प्योरिटी हटती जा रही है धीरे धीरे.
1: अगेन इस फास्ट लाइफ में कुकिंग, हाउ आई कैन इनकॉर्पोरेट इट, आई कम टू दैट वो थोड़ा लेटर स्टेज में. लेकिन पहले एक बहुत बड़ा इशू आज के आई थिंक वर्ल्ड ओवर, ये सवाल बहुत ज्यादा, पहले तो विदेशों में इतना सवाल नहीं था, ये वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड.
0: आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट.
1: वी गोना किल समबडी.
0: किलिंग समबडी इज ऑफ कोर्स डीप रूटेड. आपकी कॉन्शियसनेस आपको अगर अलाउ करती है तो वो ही हमें सबसे फंडामेंटल लेवल पर तो तभी समझ में आ जाता कि जब एक जीव की हत्या करके हम उसको अपना भोजन बनाकर स्वीकार करेंगे तो उस भोजन में कहां की प्योरिटी होगी या कहां की पॉजिटिविटी होगी. वो तो शायद एक बच्चे को भी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. तो अगर फिजिकल लेवल पर भी देखें तो आज मेडिकल साइंस भी हमें ये समझा देती है कि नॉनवेज इज हार्मफुल फॉर द कॉस्ट्यूम फॉर द बॉडी. ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन्स है दे आर लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड वेयर इज जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है. अब नॉनवेज भोजन जब अंदर जाता है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जेनरेट करता है. अब लॉन्ग इंटेस्टाइन होने के कारण ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा समय तक रहता है एंड ऑब्वियसली फिर उसके वो केमिकल्स जो जेनरेट होते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता. और वर्तमान समय तो कितना ज्यादा अवेयरनेस इस बारे में जेनरेट हो गया कि जो एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में रखा जाता है उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है. यू नो वी आर ऑल अवेयर ऑफ उनके साथ क्या नहीं होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा जो कहे बहुत मोटा बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको आर्टिफिशियल मीन्स से केमिकल्स हॉर्मोन्स ये सारे उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं जिसके कारण कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जेनरेट होते हैं और उसी के कारण कैंसर जो लिवर का कैंसर या कोलोन का कैंसर वो उसी के कारण बढ़ता है.
1: इसी दौरान डिजीजेस भी कई बार आ जाते हैं,
0: उसी के बढ़ जाते हैं क्योंकि जो उस जानवर के अंदर डिजीज होगी तो वी ऑटोमेटिकली टेक इन दैट डिजीज. और कहा जाता है कि जब उस जानवर का स्लॉटर होता है तो जो फ्लैश होती है वो इमिडिएटली डीकलर हो जाती है. यू नो इट बिकम्स वेरी ग्रीनिश ग्रेश. लेकिन जो हमें मार्केट में मिलता है दैट इज एब्सोल्यूटली रेड इन कलर. तो उसको आर्टिफिशियल तरह से केमिकल्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उसके अंदर इंजेक्ट करके उसको वो रेड कलरेशन दी जाती है और ये केमिकल्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. तो एक तरफ से वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट के पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए जो फल और सब्जियां हम खाते हैं, और दूसरी तरफ से हम ये सारे केमिकल्स ये सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले जाते हैं इसको किस मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उसका हमारे शरीर के ऊपर तो असर पड़ने ही वाला है, दैट इज डेफिनेट. बट उससे भी ज्यादा डीप इम्पैक्ट जो पड़ता है दैट इज ऑन द माइंड.
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि क्या वो मैं इनटेक जो ले रहा हूँ जो नॉन वेजिटेरियन का है बॉडी पे पड़ रहा है. पीपल इनफैक्ट एट टाइम्स लेट इट बी कि मैं और भी तो काफी सारी चीजें खा रहा हूँ तो ठीक है क्योंकि ये टेस्ट डेवलप्ड है. But how does it affect my mind, my thoughts?
0: आप एक क्षण के लिए इमेजिन करें कि हमें अभी कैप्टिव रखा गया है और कोई आ रहा है सामने से, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा है और वो हमें अभी काटने वाला है. तो हमारे मन में किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं?
1: लेकिन जो लॉजिक देता है आदमी वो ये कि उन्हें तो समझ ही नहीं आता.
0: क्यों? विल एनिमल नॉट कम टू नो दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड? तो उससे पता चलता है, उसको तो जब इतने दिन कैप्टिविटी में रखा जाता है तब भी उसको पता होता है कि

0: आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो कुछ पल जिस समय वो स्लॉटर किया जाएगा उस समय उसके मन में क्या संकल्प जनरेट होंगे,
1: व्हाट काइंड ऑफ मौत को देख के
0: जो भय जनरेट, राइट, एंड वेरी हाई लेवल ऑफ फियर. और जैसे ही वो हाई लेवल ऑफ फियर थॉट्स क्रिएट हुए तो एड्रेनालिन पूरी बॉडी के अंदर सिक्रेट हो गया, क्योंकि जैसा थॉट वैसे हॉर्मोन्स सारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं. वाइब्रेशन भी, द होल वाइब्रेशन इज ऑफ फियर, अग्रेशन, नेगेटिविटी. इतना ज्यादा भय मन में और उसके पूरे वाइब्रेशंस शरीर में जनरेट हो जाते और ये उसकी अंतिम स्थिति है जिस समय उसको मारा जाता है. इसका मतलब कि जिस क्षण उसका वो स्लॉटर हुआ, इट हैज बीन किल्ड इन दिस स्टेट ऑफ माइंड एंड उसका इफेक्ट उसके बॉडी पर पड़ा. तो जब हम वो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमिंग द फ्लैश, हम सिर्फ उस मांस के टुकड़े को नहीं कंज्यूम कर रहे, लेकिन उसके साथ जो हॉर्मोन्स उस क्षण सिक्रेट हुए थे जब उसे मारा जा रहा था, हम उन हॉर्मोन्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं और साथ साथ जो वाइब्रेशंस भय की, एंग्जाइटी की, अग्रेशन की जो जनरेट हुई, वी आर कंज्यूमिंग दोज वाइब्रेशंस. तो ऑटोमेटिकली मैं कौन से वाइब्रेशंस कंज्यूम कर रहे हैं? फियर. तो ये बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने अंदर खुद से ही वॉलेंट्रिली, अब एक तरफ से हम कह रहे हैं हमें गुस्से को खत्म करना है, भय को खत्म करना है, चिंता से मुक्त होना है, तो एक तरफ से उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरी तरफ से इस भोजन के थ्रू उसी को कंज्यूम करते हैं, तो कहां तक पहुंचेंगे?
1: बिल्कुल. लेकिन जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की बात हुई, ड्रग्स की बात हुई, बहुत से लोगों से जब बात करते हैं तो नॉन वेज बिकम्स लाइक एन एडिक्शन. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, दे आर सो मच एडिक्टेड टू द टेस्ट दैट दे लाइक ऑल दीज थॉट्स, इवन इफ दे कम, यू नो, इवन इफ दे रियलाइज इट, इवन इफ दे वॉन्ट इट, दे डोंट, द मोमेंट इट इज दैट इट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम, दे हैव टू कंज्यूम इट.
0: बट दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल. एक बार आपको समझ में आ गया, वो तो हम अभी तक बहुत सारी बातें ऐसे करते आ रहे थे जो हमारे लिए हार्मफुल थी, बहुत सारी ऐसी बातें करते आ रहे थे बिना समझे, और कुछ बातें समझ कर भी हम गलत कर रहे थे विच वर हार्मफुल टू मी. तो अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है एंड आई वॉन्ट टू डैमेज माई सेल्फ, मुझे अपने ही शरीर को एक ग्रेवयार्ड बनाना है जहां मुझे डेड बॉडीज को अपने अंदर डालना है, दैट्स माई चॉइस. शिव बाबा हमें बताते हैं आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और आत्मा उस मंदिर में एक देवता के समान है. तो जैसे देवता तो बहुत पवित्र है ही, लेकिन वो मंदिर भी कैसा होना चाहिए? द टेम्पल ऑल्सो हैज टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि उसकी भी तो वाइब्रेशंस है ना. तो दैट्स वाई वी आर वेरी केयरफुल कि हम किस तरह की वाइब्रेशंस अंदर कंज्यूम करें. अब अगर मेरे सामने वो चीज आ जाती है and if I have absolute no self control, that means my intellect is not working. My intellect is not working and I am consuming anger. ye hame dhyan rakhna padega ki hum bhay ko apne andar dal rahe hain, agitation, krodh, is sab ke hormones ko apne andar dal rahe hain. fir uske baad ye na kahe ki mujhe khushi chahiye, मुझे शांति चाहिए, तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा.
1: इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं जो खा रहा हूँ उससे मेरे थॉट क्रिएट होते हैं.
0: उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें.
1: या
0: सी एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन टू एन एक्सपेरिमेंट. एक हफ्ता, दस दिन या कहें एक मास को अपने आप को एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पर लेकर जाइए. मे बी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. एक्चुअली All it requires is one thought.
1: No, I don't think so. At least experiment करके देखने में हर्ज नहीं.
0: तो एक संकल्प, अभी तक हमने देखा कि हर परिवर्तन के लिए one thought. समझ कर सिर्फ एक संकल्प लगता है. जब तक नहीं समझ में आया, take your time. You know, discuss, study, research, आप सब कुछ कर सकते हैं. आप सेंटर पर आते हैं, बहनों से बात करें, understand it properly. लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की जो हिम्मत रखनी है, इट्स जस्ट वन थॉट.
1: एंड इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, ज्यादातर लोगों को अंदर बेसिकली पता भी है कि इट इज नॉट गुड, यू नो, क्योंकि एक और भी बात है कि जहां जब जो चीज विदेशों में हो रही होती है वो हमें एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है.
0: और कई बार लोग ये फील करते हैं कि यू नो स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर खिलाते हैं क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है. तो इसमें भी मेडिकल साइंस अब जो वर्तमान समय हमें बताते हैं कि पहले कहते थे पर डे you need at least 150 grams of protein.

0: 150 gram protein aapko roz lena. And then we were told as children, you know, eggs ya non-veg, ye aapko high protein diet hai. Lekin ab bataya jata ki per day you need only 45 grams. 45 gram protein aapko chahiye. Baki jitna aap excess mein kha rahe hain, wo extra uric acid ban jata hai. फायदे की बजाय
1: नुकसान
0: शरीर के लिए नुकसान.
1: सिस्टर शिवानी, ये तो उस खाने की बात हुई जिसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में थे कि वेदर इट्स अ हेल्दी फूड और नॉट. एक ऐसे खाने के ऊपर बात मैं करना चाहती हूँ जो कि हर शास्त्र में जिसके लिए कहा जाता है कि उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हर मुझे लगता है हर मेडिकल जो लोग हैं, मेडिकल लोग जो है वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड, और वो है लहसुन और प्याज, यू नो, अनियन एंड गार्लिक. कई बार ये कहा गया है कि ये शुद्ध या सात्विक या प्योर नहीं है, लेकिन मेडिसिनल के लिए सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए वो लहसुन खाना, प्याज खाना बहुत जरूरी है.
0: भोजन को या कहे एनर्जी को तीन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सात्विक, विच इज वेरी प्योर हाई एनर्जी फूड. उसके बाद राजसिक, जो है एक्टिव, बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला एनर्जी. और तीसरा है तामसिक, बहुत डल डेड फूड. तो अनियन और गार्लिक ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है. और आज दिन तक भी आप देखो, कभी भी कोई त्योहार होता है या कोई व्रत का दिन होता है तो उस दिन हम लहसुन प्याज भोजन में नहीं खाते हैं.
1: अगर देवता को, भगवान को हमें
0: भोग लगाना है तो लहसुन प्याज नहीं उसमें डाला जाता. तो ये भी अपने आप से क्वेश्चन करने की बात है कि क्यों लहसुन प्याज उसमें नहीं डालते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका मतलब इंटेलेक्ट को ये पता है, या शायद अब तो हम इन बातों को ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स. तो देवताओं को जो भोग लगाया जाएगा वो बहुत प्योर हाई एनर्जी फूड होगा. प्योर आत्मा को प्योर भोजन ही खिलाया जाएगा. अब हम सब भी तो एक प्योरिफिकेशन की यात्रा पर चल रहे हैं ना. हम सबके लिए भी जैसे शुरू में ही हमने देखा कि सेलिबेसी भी हमने देखा कि क्यों, व्हाई इज इट, बिकॉज वी आर ऑन द जर्नी ऑफ प्योरिफिकेशन. तो उसी तरह सात्विक अन्न, क्योंकि वी आर ऑल टॉकिंग कि हमें एक प्योर मन चाहिए, हमें एक ऐसा मन चाहिए जिसमें से ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, टेंशन ये सब निकल जाए, शांति, प्रेम, शक्ति ये आ जाए. तो अन्न कैसा चाहिए उसके लिए? वेरी हाई एनर्जी फूड. तो गार्लिक एंड अनियन, जैसे आपने कहा कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट कि शरीर के लिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेंटल इमोशनल लेवल पर बहुत हानिकारक है. ये ऐसा भोजन है जिससे एंगर, अग्रेशन, एजिटेशन बहुत ज्यादा जेनरेट होता है. और इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हैं तो ऐसे भोजन से परहेज रखनी चाहिए. कई स्टडीज भी इस पर हुई है. खैर, हम तो क्योंकि परमात्मा ने जो बताया और जो आज दिन तक भी हम समझते हैं उस आधार से ये परहेज रखते हैं, लेकिन आज साइंटिस्ट भी ये स्टडी कर रहे हैं और ये बताते हैं कि गार्लिक अनियन के अंदर सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है एंड ये वो ब्लड और ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है. तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है और ब्रेन वेव्स जो होती है उसको डिसिंक्रोनाइज कर देता है. तो कहा जाता कि पहले समय में 1950s की बात है कि पायलट्स को कहा जाता था कि जब आप फ्लाइट टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको उससे कुछ समय पहले तक गार्लिक नहीं खाना है क्योंकि उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा. और बॉब डेक जो ईईजी मशीन है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनका ये कहना है कि जिनके ऊपर वो स्टडी करते थे, यू नो ईईजी जो ब्रेन वेव्स हम लेते हैं, तो वो स्टडी जिन लोगों पर की जाती थी, अगर वो लंच में गार्लिक खाकर फिर आते थे तो देखा जाता था कि लंच के पश्चात जो ईईजी वेव उसकी निकलती, इट यूज्ड टू बी डिफरेंट. और इसलिए वो स्टडी के दौरान उनको कहा जाता था कि आपको गार्लिक नहीं खाना है बिकॉज इट डिसिंक्रोनाइजेस द ब्रेन वेव्स.
1: अगेन समवेयर मे बी यू नो दिस मे बी ट्रू एक्चुअली बिकॉज व्हेन रिकी इज डन, रिकी के दौरान भी ये कहा जाता है कि जो रिकी दे रहा है वो भी तो मेंटल पावर पे ही है, थॉट पावर पे, और जिसको रिकी दी जा रही है वो गार्लिक और अनियन से परहेज होना चाहिए.
0: हाँ बिल्कुल. तो इसलिए अगेन इट्स नॉट कि आपको ये करना ही है, नथिंग इज कंपल्सरी, लेकिन जितना जितना आप वो प्योरिफिकेशन के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये चीजें आपको मदद करती हैं कि आप एक तरफ से हाई एनर्जी

0: जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आप लो एनर्जी फूड क्यों खाएंगे जो आपको पुल डाउन करे, तो क्यों ना ऐसा हाई एनर्जी भोजन खाया जाए जो आपकी एनर्जी लेवल को और भी बढ़ाता है। तो अनियन गार्लिक की इस कारण से परहेज की जाती और इंडियन कल्चर में तो शायद ये बहुत इजीली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन सिर्फ ये कि हमने उसको आज दिन तक कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक रखा, अब जब हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए वो पवित्र दिन सिर्फ एक या दो दिन नहीं साल में लेकिन पूरा जीवन ही बन जाता। इसीलिए हम ये प्याज और लहसुन की परहेज रखते हैं।
1: एक्चुअली इफ वी अंडरस्टैंड यू नो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग और अनुभव, जैसा कि नॉन वेज के साथ भी है, एक अनुभव करके देखने की कोशिश है। और दूसरी बात अगेन अनियन एंड गार्लिक, और खासकर बात यह है कि क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ज्ञान हमें आ रहा है सीधा परमात्मा से, तो हम एटलीस्ट उसको ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। एक और बात जैसा आपने शुरू में ही कहा सिस्टर शिवानी कि जो खाना बन रहा है, जब हम आज फास्ट जिंदगी है, फास्ट फूड है, फास्ट सब कुछ है, तो जो हम बाहर से खाना जब ले रहे हैं तो वो किस तरह की वाइब्रेशंस में खाना बन रहा है वो भी बहुत डिपेंड करती है, किस मूड में है। और वो हम चलिए नॉनवेज की बात नहीं करते, वेजिटेरियन फूड भी, हाउ मच दैट मैटर्स यू नो, वो थॉट जब हम खाना बना रहे हैं या जब खाना खा रहे हैं,
0: भोजन किस स्थिति में बनाया जाता है इसका बहुत ज्यादा, जहां जैसा अन्न वैसा मन जहां बात हो रही है, तो इस फैक्टर का बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है। आज दिन तक आप देखो जब हमें प्रसाद मिलता है तो हम उस प्रसाद को किस तरह से स्वीकार करते हैं, क्या है उस प्रसाद में, उस प्रसाद में और घर के बने हुए भोजन में क्या फर्क है। सपोज हमें मंदिर में गए, हमें हलवा मिला, घर में भी हलवा मिला, होटल में भी हलवा मिला, तीन रेसिपी इज द सेम, द डिश इज द सेम,
1: नहीं लेकिन प्रसाद का जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा होता है।
0: हाँ, अच्छा क्या होता है उसमें, क्या अच्छा होता है, दैट आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ, व्हाट इज इट अबाउट दैट, इट्स द थॉट द फीलिंग एंड द इंटेंशन, क्योंकि वो जो बनाया गया है वो किस भाव से बनाया गया है, वो परमात्मा के लिए बनाया गया है। तो जिन्होंने वो भोजन बनाया होगा, वो प्रसाद बनाया होगा, उन्होंने कितनी श्रेष्ठ भावना से बनाया होगा कि हम भगवान के लिए ये बना रहे हैं, कितना मन में ध्यान रखा होगा कि उस टाइम कोई अपवित्र थॉट नहीं आना चाहिए, शुद्ध संकल्प ही आने चाहिए। तो वो उस शुद्ध संकल्प से बनाते हैं और उसी शुद्ध संकल्प से हम उसको स्वीकार करते हैं, दैट इज हाई एनर्जी फूड। घर में हलवा बना, एक माँ ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया, वो भी अच्छी भावना है कि बहुत प्यार से कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उस भावना से बनाया और बच्चों ने भी उस भावना से उसको स्वीकार किया कि हमारी माँ ने हमारे लिए बनाया। होटल में बन रहा है, किस भावना से बन रहा है, कि ये बिकेगा 40 रुपीज का, नाउ व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, अर्निंग इनकम, लोएस्ट लेवल ऑफ थॉट। तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीनों थॉट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अभी तक हम उस फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते आए कि मन की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति बहुत शांत और शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई टेंशन है, अगर किसी बात पर आप परेशान हैं, सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, रिलैक्स, अनवाइंड, सॉर्ट इट आउट, स्टेबलाइज, देन गो बैक टू द किचन। लेकिन गुस्से में ऐसे जब खाना बनाते हैं तो ये एनर्जी है ना सारी, ये एनर्जी सिर्फ यहाँ थोड़ी रहती है अंदर, इट्स आउट देयर, एंड दैट एनर्जी इज अफेक्टिंग एवरी पार्टिकल ऑफ द फूड। उस भोजन के कण कण पर उस शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, उस संकल्पों का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर गुस्से में बनाया गया है, वो चिंता में बनाया गया है, कोई परेशानी सोच रहे हैं वो बनाया गया है, तो सारा परिवार जब उस भोजन को स्वीकार करेगा तो ओनली नॉट द फूड लेकिन वो सारी वो चिंताएं भी साथ में कंज्यूम करेंगे। तो भोजन को बनाते समय बहुत ध्यान रखें और भोजन को खाते समय बहुत ध्यान रखें कि डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे भोजन करते हैं, क्योंकि आजकल कई लोग टीवी के साथ भोजन करते हैं, सो अगेन स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, इट्स टू मच विद वायलेंस और द रॉन्ग काइंड ऑफ इमेजेस, तो वो भोजन भी वो राइट प्रभाव शरीर पर नहीं

0: डाल पाएगा। या अगर डाइनिंग टेबल पर हम भोजन कर रहे हैं तो कई बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है,
1: डिस्कशन सारे डाइनिंग टेबल,
0: डायलॉग इज ओके, लेकिन एक नेगेटिव वायुमंडल कभी भी भोजन के समय नहीं क्रिएट होना चाहिए। और जहां तक हो सके भोजन एक बहुत पीसफुल और प्योर वातावरण में करेंगे तो वी विल बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज एडिंग टू नेगेटिव एनर्जी। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट साइंस ने अब करके दिखाया, जापान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने वाटर के क्रिस्टल्स पर एक्सपेरिमेंट किया है। एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करके इन अ वेरी वेरी कोल्ड रूम एंड यूजिंग वेरी हाई फोटोग्राफी उन्होंने वाटर पानी के क्रिस्टल्स के फोटोग्राफ्स लिए हैं और उन क्रिस्टल्स के ऊपर संकल्पों का असर देखा गया है। और ये पाया गया कि एक एक क्रिस्टल की शेप बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का संकल्प उस पानी को दिया गया है। मतलब द रिजल्ट दैट हैज कम आउट फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इज एब्सोल्युटली एन आई ओपनर। इवन वी हैड नॉट रियलाइज दैट इट यू नो द इम्पैक्ट इज प्रोबेबली सो डीप कि एवरी क्रिस्टल इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। एंड आप देखिए हर चीज जो हम कर रहे हैं वो पानी से कितनी ज्यादा संबंधित है। हमारा शरीर ही 70% वाटर है। एवरी थॉट is affecting that. हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें पानी है, इवन जो सब्जी है जो फल है पानी से बना हुआ है, तो एक एक क्रिस्टल जो उसमें बन रहा है वो हमारे संकल्पों से इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक संकल्प हमारा पानी के एक एक क्रिस्टल पर कितना प्रभाव डाल रहा है।
1: डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली एन आई ओपनर, यू नो लाइक किस तरह से हमारे थॉट्स जो हैं वो जितना जो जो चीजें हमारे आसपास हैं उस पर इफेक्ट करती है।
0: पौधों पर भी तो हम देखते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: कि पौधों को अगर आप प्यार से उनको बात करते हैं या सिर्फ थॉट्स भी देते हैं तो वो पौधे कैसे ग्रो होते हैं। भोजन का अगर कोई प्रयोग करके देखे यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। जस्ट ट्राई एंड हैव ओनली हाई एनर्जी फूड एंड फूड विच इज कुक्ड इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो उसका आपके मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
1: और सही तरीके से खुद अपने आप को, हमने हर बार यही कहा है कि खुद डिसीजन मेकर बने।
0: ये किसी भाई का अनुभव है जो सेंटर पर आते थे। वो भाई एक दिन सेंटर पर आए और कहने लगे कि बहन जी बहुत दिन से ना मेरा मन बहुत परेशान है और मुझे कोई अजीब से संकल्प आ रहे हैं, मुझे स्वप्न आ रहे हैं अजीब से। और वो बहुत ही रिच फैमिली के थे और कहते मुझे स्वप्न आ रहे हैं कि मैं एक चौल जैसे एरिया में घूम रहा हूं और मुझे मकान नहीं मिल रहा रहने के लिए। यू नो एंड ही सेज आई एम सो डिस्टर्ब्ड, मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरा भविष्य तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं होने वाला कि ऑल माई मनी इज गोइंग टू गो अवे एंड आई एम गोइंग टू हैव नथिंग, मुझे क्या हो रहा है। एंड द सिस्टर एट द सेंटर ऑल्सो डिडंट नो कि उनको ये सपने क्यों आ रहे हैं। एंड एक हफ्ते के बाद द लेडी हु यूज्ड टू कुक इन हिज हाउस शी केम एंड सेड कि मुझे 25,000 रूपये चाहिए, मैं बहुत समय से मकान ढूंढ रही हूं लेकिन मुझे मकान नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। उसको वो 25,000 रूपये दे दिए और उसके बाद से वो स्वप्न आने बंद हो गए।
1: आई डोंट बिलीव,
0: या दिस इज हिज रियल लाइफ, यू नो दिस इज हिज रियल एक्सपीरियंस। क्योंकि ऑब्वियसली वो बहन के लिए वो इतनी बड़ी टेंशन की बात थी कि उसके पास मकान नहीं था तो भोजन बनाते समय वो क्या सोचेगी।
1: कंटिन्यूस वही
0: जो आपके लाइफ में टेंशन चल रही है आप वही तो सोचेंगे, और उसका इतना ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ा। तो ये तो एक बहुत डायरेक्ट इंसिडेंट हमें मिला, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि बहुत थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, कई बार हम बहुत लो फील करते हैं, हमें रीजन भी नहीं पता होता कि व्हाई आर वी फीलिंग लाइक दैट।
1: दैट्स ट्रू एक्चुअली, आई कैन एक्चुअली फील इट, यू नो, क्योंकि आज का एक ट्रेंड है कि खाना जो है, क्योंकि वक्त है ही नहीं, खाना नहीं बनाते, बाहर का ही कोई बना रही है या कोई बहन बना रही है या कुक है, तो डेफिनेटली दैट बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
0: तो अगर कोई इस तरह से आपके घर में भी बना रहा है देन दे नीड टू बी ट्रेन्ड,
1: यू नो, कि क्या थॉट रख के काम करना चाहिए। बिकॉज येस डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो हम लो फील करते हैं, कुछ विचार आ रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन हो सकता है एक्चुअली।
0: बट इसी का कारण है कि हम थोड़ा सा ये परहेज रखते हैं, क्योंकि जहां आप एक तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गुस्से को खत्म करना है, पवित्रता को धारण करना है, तो फिर जब हम ऐसा भोजन स्वीकार कर लेते हैं जो गुस्से या चिंता की स्थिति में बनाया गया, तो ये सारी जो की हुई मेहनत है सारी वापस आ जाती है। सो देन वी विल जस्ट कीप ऑन प्ले।

0: like that. You know, move up and then come down and move up. And then we feel ke hum itna kuch kar rahe, humare andar change kyun nahi aa raha. Ye chote chote preventions usme bahut help kar jaate hain.
1: Sister Shivani, ye jo nitty gritties hume bataye aapne jeevan ki, jinke bare mein hum zyada dhyan nahi dete, lekin kitne important hai. Bahut bahut dhanyawad.
0: Om Shanti.
1: Om Shanti. Itne lambe safar par hum chale hain aur ye chote chote rukawatein jo hain ye hame us manzil tak na pahuncha paye. ऐसा नहीं होने देंगे हम. जब रियलाइजेशन हो जाए, जब पता चल जाए कि क्या वजह हो रही है, तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे खाने के साथ, जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उनके साथ. और जब भी हम खाना बनाने बैठे या खाने बैठे, उन थॉट्स को पॉजिटिव रख के. कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999-3-4-666-9873-666-555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं, बहुत से आपके सवाल हैं. अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात, क्योंकि आप ही के सवालों के साथ हम सिस्टर शिवानी से बातचीत करेंगे. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेज करना है खुद अपने आप को। पिछली कड़ी को देखें तो एक मिनट की इम्पोर्टेंस की बात हमारे सामने आई थी और हमने अपने आप से वादा किया था कि हर एक घंटे बाद अपने मोबाइल पर या अपने घर में कुछ न कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमें याद आ जाए कि वो एक मिनट हमने अपने लिए निकालना है। उसमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट देने हैं, न पीछे का सोचना है न आगे का सोचना है, सिर्फ अपने साथ, अपनी सही पहचान के साथ। और मैं कौन हूं? मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक पावरफुल बींग हूं, मैं एक लवफुल बींग हूं। वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, और वो अनुभव हमें लगता है कि जरूर आप तक पहुंच रहा होगा कि कैसा आपका पूरा दिन गुजरता है। आज थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं और मैनेज सेल्फ को कैसे करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: मैंने तो सबसे पहले जाके यही किया था सिस्टर शिवानी, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों ने जो जिनसे हमने वादा लिया था कि ये जरूर करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते का अनुभव जो है वो हमने एक दूसरे के साथ तय किया कि हम देखेंगे हर एक मिनट के बाद, हर एक घंटे के बाद जो एक मिनट हमने अपने आप को दिया वो कैसा अनुभव करवाता है। बिलीव मी, एक दिन के अंदर अंदर आई कैन फील कि आपकी वो थकान कम होती है और वो जो एनर्जी आपको हर एक घंटे बाद मिल रही है कहीं ना कहीं। पहले तो मुझे ये लगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूं, कि मतलब मैं सेल्फ टॉक है शायद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअली आप देखते नहीं हो, रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, पर वो एंड तक आते आते आप ठीक रहते हो।
1: दैट्स ऑल दैट इट इज, इट्स बेसिकली लिटिल रेस्ट। रेस्ट और साइकिल को तोड़ना, वो जो ऑर्डिनरी थॉट्स का साइकिल है उसको तोड़ना, ताकि कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना, ताकि फिर वो एक नया साइकिल शुरू हो जाए। यू नो, एक पॉजिटिव, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है पर होती नहीं है, तो वो अपने आप नहीं होगी ना, तो उसको कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग का साइकिल सेट हो जाए। अब कई बार भाई बहने कहते हैं नहीं होता है, बार बार एक घंटे के बाद एक मिनट नहीं निकाला जाता है, तो एक तो ये निकाला जाता है, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव। और फिर एक आधी बार अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं ना, जस्ट बिकॉज एक आधी बार मिस हो जाता है उसकी वजह से हम सारा दिन ही नहीं करें, हल्का रहे, टेंशन नहीं रहे, नहीं तो उसी की टेंशन हो जाती है कई बार।
0: नहीं निकला।
1: स्पिरिचुअलिटी टू बी कि आप उसकी टेंशन ले लो कि मेरे से नहीं हुआ या मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार शुरू में अटेंशन देके करना पड़ता है, एक बार बेनिफिट होने लगता है तो यू नो थोड़े दिन के बाद, अबाउट लेट्स से 10 डेज, 10 दिन के आसपास के बाद आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। आपका बॉडी क्लॉक अपने आप आपको याद दिला देगा कि एक घंटा हो गया है, एंड इट इज सरप्राइजिंग। आप कभी देखो कि एग्जैक्ट एक घंटे के बाद आपको याद आ जाएगा, एंड आप देखोगे ना घड़ी में एग्जैक्ट एक घंटा हुआ होगा। इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, माइंड को आदत पड़ जाती है ना, जैसे लंच टाइम है तो पता चल जाता है।
0: इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि कई बार मेरा ना अलार्म नहीं भी लगा होता, 4 बजे एग्जैक्ट मैं उठ जाती हूँ

0: उसके बाद 6 बजे भी एग्जैक्ट उठ जाती हूँ, इवन एक अलार्म नहीं लगा
1: तो वो बॉडी क्लॉक है।
0: हाँ, और फिर मुझे जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे को याद आता है कि अच्छा ये 6 बज गए होंगे, एंड जब अलार्म बजाओ या नहीं बजाओ मैं देखती हूँ घड़ी तो 6 बजे होते हैं।
1: सिमिलरली ये हर एक घंटे के बाद 1 मिनट थोड़े दिन सर्व करने के लिए अलार्म और ऐसे एक्सटर्नल मेजर्स की जरूरत पड़ती है। 8-10 दिन 15 दिन के बाद यू डोंट नीड टू पुट एन अलार्म एवरी टाइम ऑन योर फोन, वो आपको नेचुरली याद रहेगा। लेकिन अगर पहले नहीं किया और सोचे नेचुरली याद रहेगा हर एक घंटे के बाद, तो वो याद नहीं रहता है। हम सोचते नहीं याद रहेगा मुझे, ऐसे नहीं याद रहता, वो एक पैटर्न को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो नेचुरल याद
0: रहता है। इनफैक्ट दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस कि हमारी ये जो बॉडी है ये वेट करती है कि हम इसे इंस्ट्रक्शंस दें,
1: माइंड भी वेट करता हाँ, है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें।
0: एक्चुअली यू नो ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि अगर हमने उसको करेक्टली क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं,
1: हम अपने मन को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं क्या सोचना है, कब सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या मुझे नहीं, हम क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हम समझते हैं मन अपने आप वैसे ही चलेगा, फिर वो वैसा नहीं चलता, वो तो यहाँ वहाँ का इधर उधर का सोचता है, फिर हम कह देते हैं मन तो बहुत चंचल है,
0: फिर किसी और की इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है ना वो, किसी मन किसी फिल्म की इंस्ट्रक्शंस ले ली, कहीं और की इंस्ट्रक्शंस ले ली।
1: तो अगर मन को डिसिप्लिन करे, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि ना कईयों को लगता है मन को कंट्रोल करना तो इट साउंड्स वेरी यू नो वेरी स्ट्रेसफुल कि जैसे मन को कंट्रोल करना, लेकिन एक सिर्फ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन भी नहीं कहे उसको, कहे एक राइट वे ऑफ थिंकिंग, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं निग्लेक्ट हुआ था, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपना ही मन है, अपनी बात क्यों नहीं मानेगा।
0: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं अपने ही बच्चे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। वेरी ट्रू, इट इज सो ब्यूटीफुल, एंड इन फैक्ट इट कैन बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप।
1: इट इज अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ, इसीलिए हमने कहा था पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट विद द सेल्फ, then with family and then with work. That is what.
0: और इनफैक्ट यहाँ फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि सेल्फ के साथ हमने रिलेशनशिप तो क्रिएट किया, अब मुझे मैनेज क्या करना है।
1: एक्चुअली जब हम स्कूल जाते हैं तो हम हमेशा कहते थे कि स्कूल में 3 बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, जिसको हम 3 आवर्स कहते हैं, कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो उसको हम हमेशा स्कूल में 3 आवर्स कहते थे कि ये 3 आवर्स बेसिक होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये अगर आप फाउंडेशन से सीख लेते हो तो आपकी पूरी जो एजुकेशन है और आगे आपकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है, वो 3 आवर्स पे। तो जब हम स्कूल और कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं तो हमें लगता है वाओ द लर्निंग पीरियड इज ओवर, नाउ द फन पीरियड विल स्टार्ट, यू नो सारी लर्निंग वाला जो फेज था मेरे जीवन का वो खत्म हो गया। तब हमें ये नहीं पता होता कि जो लर्निंग है वो एक्चुअली अब शुरू हुई है। अभी तो हम सिर्फ मेमोराइज कर रहे थे, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही थी, हमारी मेमोरी में हम भरते जा रहे हैं, जिसको हम कहते थे मग अप कर दो, मेमोराइज कर दो चीजों को। लर्निंग तो अब शुरू होती है, विच इज द लर्निंग द लेसन्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में कई ऐसी बातें आएंगी जिनको हमें तुरंत अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, डिसीशंस लेने पड़ेंगे, वो हमने बहुत ज्यादा उस यात्रा के दौरान सीखा ही नहीं होता,
0: बिल्कुल नहीं
1: सीखा नहीं होता। तो जो बहुत सारा आज हमारा स्ट्रेस और ये सब है, इसका मूल कारण ये है कि हमने वो वाली एजुकेशन नहीं ली है। हमारे जीवन के 4 पहलू हैं जिनको हमें इस जीवन की यात्रा के दौरान फोकस भी करना पड़ता है और उन पर इक्वल ध्यान भी देना पड़ता है, उसको हम 4 आवर्स कहते हैं। जो ये 3 आवर्स थे, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, एंड 4 आवर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड रिसोर्सेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेस। अब ये 4 को कैसे मैनेज करना है, ये हमें
0: नहीं आता,
1: किसी ने नहीं सिखाया नहीं, बेसिकली दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ना स्कूल में और ना घर पे, नो वन वॉज टीचिंग अस दैट,
0: वी वर नॉट इवन अवेयर ऑफ देम, यू नो कि दे एग्जिस्ट। चलिए हम रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक को तो पता है हमें किस स्थूल रूप में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहा,
1: रिलेशनशिप,
0: रोल्स और रिसोर्सेस,
1: कैसे इनको 4ों को मैनेज करना है। तो ज्यादा जो आज हमारे को संघर्ष जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें शायद हमने सीखा नहीं या सिखाया नहीं कि अपने आप को कैसे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, रिलेशनशिप्स में कैसे यू नो मिलाकर सबके साथ चलना, किस समय पर कौन सा रोल प्ले करना, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कौन सी पहले जिनको मैनेज करना। बाहर की तो सब पता है रिसोर्सेज, लेकिन मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसको मुझे मैनेज करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये 4 पहलुओं को अपने जीवन में देखते, जिसमें सबसे पहले आती रिस्पॉन्सिबिलिटी।

0: और उसमें हम यही कहेंगे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा पूरा बचपन है या हमारे बड़े होने का प्रोसेस है, तो हमें ये सिखाया गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू,
1: बी रिस्पॉन्सिबल,
0: रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस, रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी, रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर योर फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योर ब्रदर्स, रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग ऑलवेज। तो हमेशा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती तो टू डू समथिंग, कुछ करने की जिम्मेवारी उठाओ, ये करने की जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी हमेशा कुछ करने के लिए थी। We never realized that responsibility was to be someone.
1: Mm-hmm.
0: It was always to do something.
1: I should become, like, I should be somebody in the sense?
0: Let's say, happy. So to be happy, is that a responsibility?
1: There's no way.
0: To be loveful. Mm-hmm. Did anyone teach me that is my responsibility?
1: No.
0: They said, do this. This is your responsibility. Aaj ye kaam pura karke rakhna, ye aapki zimmevari hai. Apni padhai puri karna. इतने अच्छे मार्क्स लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी हमेशा
1: करने में आते थे।
0: लेकिन मुझे फील क्या करना है, मुझे अंदर कैसे रहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो करने वाली शक्ति है, जो मार्क्स लेने वाली भी शक्ति है, जो पढ़ने वाली भी शक्ति है, जो सारा काम जो ये करने वाली शक्ति है, उसको कैसा रहना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट नो वन सॉ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ओनली केम आउटसाइड। The responsibility was always in doing, not in being. Now we are not human doings. We are human beings.
1: लेकिन responsibility में शिवानी basically आप किसी को एक जिम्मेदारी जब दे रहे होते हैं, सौंप रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं स्वमान बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर हम
0: See again you're going the other way around. आप जब कुछ कर रहे होते हो तब आपका स्वमान बढ़ रहा होता है। आपका स्वमान रख कर आपको वो करना है। अगेन वी ट्राइंग टू लुक एट इट आउटसाइड इन कि ये करेंगे
1: तब आपको
0: तब हमारा स्वमान बढ़ेगा, ये करेंगे तो आप खुश रहेंगे, ये करेंगे तो ये होगा।
1: नहीं, बट जनरली अगर हम देखें तो पेरेंट्स भी या टीचर्स भी या आपके बॉस जो हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप करेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे।
0: अच्छे स्टूडेंट तो डेफिनेटली माने जाएंगे। जिस चीज पर आप जिम्मेवारी लेंगे वो स्किल तो आपके अंदर आ ही जाएगा, डेफिनेटली। इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स से बचपन में सिखाया गया स्कूल में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर रूम क्लीन, लेट्स से एक बच्चे को हमें ये सिखाया जाता था। तो जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हम अच्छी तरह से करके दिखाते ना। नाउ व्हाट अबाउट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पीसफुल, व्हाट, हु विल टीच मी दैट?
1: I don't even know that I can be responsible. See, अगर मुझे ये responsibility दी जाए कि मैं इस कमरे को clean कर लूँ, तो वो तो मैं कर सकती हूँ।
0: Take responsibility of cleaning your mind. See, so responsibility definitely, जहाँ आप जिम्मेवारी लेंगे आप वो कर लेंगे। यही अगर हम यहाँ भी जिम्मेवारी ले लें
1: तो वो तो, oh my god, if I look at it, it's like it's somebody else's responsibility and nobody even bothered.
0: Someone else's responsibility. कि मेरे मन की स्थिति, again see it went out to that. It was someone else's responsibility. So what happened? Doing में करते करते हम वो जो being है उसको तो भूल ही गए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू डूइंग, तो वी बिकेम मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स। अगर आप अपना सारा काम बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप एक बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सारा काम आपने दर्द में रहकर किया, सो विल आई से दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आई वॉज रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग बट नॉट रिस्पॉन्सिबल इन बीइंग। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कह रहे कि बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सारा काम करने वाला कौन? तो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो जो करने वाला है अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर वो बाहर जो काम करेगा वो भी तो अच्छी तरह से ही करेगा। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। इफ इट इज द बीइंग इज हेल्दी, द डूइंग विल ऑटोमेटिकली बी हेल्दी। लेकिन बीइंग को याद ही नहीं कि वो बीइंग है और वो सिर्फ डूइंग डूइंग डूइंग में आ गया, तो उसका सारा फोकस डूइंग में हो गया।
1: और हम कितनी बार कहते हैं कि मुझे जो भी हो रहा हो, मैं सब कुछ ठीक ठाक तो कर रहा हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ, अपनी जिम्मेदारियां तो उठा रहा हूँ, मुझे जो हो रहा है फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन मैं बाहर से सबके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ।
0: अब मेरा जिम्मेवारी है घर को संभालना। मेरी अब बड़े हो गए ना, तो अब जिम्मेवारी क्या है? ऑफिस में काम करना, कोई बात नहीं, टेंशन हुई तो कोई बात नहीं, गुस्सा हुआ था, जिम्मेवारी क्या थी?
1: सो
0: जितना वो ड्रिल इन हो गया डूइंग डूइंग डूइंग, तो वो डूइंग को

0: डिस्कस्ड एट ऑल ना,
1: मैं वी डिडंट इवन रियलाइज कि ऐसा कुछ हम कर भी सकते हैं, अपने ऊपर भी सोच सकते हैं।
0: तो बचपन से ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हमेशा बाहर कर्म से ही रिलेटेड था कि अगर आप ये जो आपको काम दिया गया है अगर आप इसको ठीक से कर लेते हो रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं,
1: आप गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो अगर आप ये काम ठीक से कर ले।
0: सो दैट वॉज डूइंग। नाउ स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस दैट यू आर अ बीइंग, यू आर नॉट अ ह्यूमन डूइंग। तो आपका सारा फोकस डूइंग पे नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग मीन्स टू बी, एंड जो ये बीइंग है दिस इज एट द कोर ऑफ ऑल द डूइंग। तो अगर ये बीइंग स्टेबल नहीं होगा तो जो आप सारा काम करेंगे वो भी अफेक्ट हो जाएगा।
1: तो हम कितनी गलत फहमी में जीते जाते हैं एंड वी कंटिन्यू टू डू, और हम सबके लिए करते जाते हैं। मतलब आई नो सो मेनी पीपल दे कीप ऑन वर्किंग फॉर अदर्स, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके लिए,
0: अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं।
1: हाँ, और वो कहते और खुद कंटिन्यूस दर्द में, तो वो इट्स नॉट एक्चुअली राइट।
0: They have to ask themselves, if that is true.
1: And they feel कि नहीं मैं किसी को कुछ कह दू ना राम,
0: क्योंकि हमें लगता है हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं।
1: मैं सारे काम तो कर रहा हूँ ना जो सो कॉल्ड जरूरत,
0: क्योंकि जिम्मेवारी की लिस्ट में ये नहीं था। जिम्मेवारी की लिस्ट में सारा बाहर वाला कर्म था। That's why we said nobody taught us as a child, nobody taught us in school कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज है, क्योंकि सेल्फ बाहर था। सेल्फ मतलब कौन? एक स्टूडेंट। सेल्फ मतलब कौन? एक मदर। सेल्फ मतलब वाइफ। तो वो वाइफ, वो मदर, वो स्टूडेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: निभा रही है, हर तरह के उसको काम करते हुए कर रही है।
0: तो वो एक सेल्फ का गलत आंसर होने से आई एम ऑल दीज रोल्स, तो मैं रोल सारे अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कर रहे हैं, लेकिन हु एम आई वो आंसर नहीं हुआ, तो वो सेल्फ पर ध्यान नहीं गया। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो बीइंग है दैट इज एट द फाउंडेशन, सपोज लेट्स से आप एक दिन सुबह एक ग्रम्पी से मूड में उठते हैं, यू नो योर मूड इज नॉट वेरी गुड, उस दिन सारा कुछ भी अगर अच्छा होता जाए तो भी आपको मजा नहीं आएगा। यू नो योर डूइंग पार्ट सब कुछ ठीक हो रहा, बट इफ योर मूड इज नॉट राइट नथिंग विल गो राइट फॉर यू। अगर आप एक दिन उठते हैं व्हेन यू आर वेरी स्टेबल इन द मॉर्निंग, अगर उस दिन कितनी भी परिस्थितियां आ जाए,
1: यू आर एबल टू हैंडल।
0: सो दैट मीन्स व्हाट इज इट, दिस इज द बीइंग, दिस इज द डूइंग। तो फाउंडेशन किसके हाथ में है? बीइंग के हाथ में। अगर बीइंग कमजोर है आज तो सारा जो डूइंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आज बीइंग स्टेबल है तो कितना भी मुश्किल डूइंग उसको करना पड़े तो भी वो आराम से हो जाएगा। सो द बीइंग इज एट द कोर पार्ट ऑफ इट। तो एज वी ग्रू अप हमने बहुत सारी बातें सीखी, हमें इतना कुछ सिखाया गया, मैकेनिकल चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जीवन को लेके सब कुछ सिखाया गया, लेकिन ये नहीं किसी ने सिखाया कि जो इमोशनल डायमेंशन है दैट इज एट द कोर। वो है जो सारे डिसीशंस लेगा, वो है जो एटीट्यूड बनाएगा, और उसी की क्वालिटी फिर एक्शन में आएगी। ये किसी ने नहीं सिखाया। हम जैसे जैसे बड़े होते गए हम स्पेशलिस्ट बनते गए बहुत सारी फील्ड में, कोई क्रिएटिव के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, हम उधर बाहर तो स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन व्हाट अबाउट हियर? क्रिएटिविटी विद माय कॉन्शियसनेस वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे हम डिग्रियां तो लेते गए, डॉक्टरेट्स भी लेते गए, ये सब किस काम में आ रही है? मुझे धन कमाया जा रहा है ताकि मैं अपने जीवन को चला सकूं, लेकिन ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि ये जो कोर वैल्यूज हैं यहाँ पर, ये मेरे हर रिश्ते को और मेरे हर निर्णय को इन्फ्लुएंस करेंगे। एवरीथिंग दैट आई वॉज बींग टॉट वॉज आउटसाइड। यहाँ तक के सोशल लेवल पर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि हम समाज के लिए जिम्मेवार हैं, हम विश्व के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन हम स्व के लिए जिम्मेवार हैं
1: नहीं। एक्चुअली हमें तो हाँ किसी ने बताया भी नहीं। ऑफकोर्स यही कि समबडी एक्चुअली हैज टू टेल अस, तो समवेयर वही परमात्मा के बता रहे।
0: दैट इज वाई। तो कहीं ना कहीं उल्टा हमने सोचा कि हम अपने लिए तो जिम्मेवार है ही नहीं, इट वेंट द अदर वे राउंड कि मेरी जिम्मेवारी तो दूसरे ले रहे हैं।
1: और कितनी बार तो हम बोलते हैं मेरी जिम्मेवारी तो वो भी लेगा।
0: यस,
1: भगवान लेगा।
0: यस, द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई क्रिएशन, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा रिस्पॉन्स मेरी रिस्पॉन्सिबल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स अबिलिटी।
1: हाउ डू आई
0: अबिलिटी टू रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वर्ड इट सेल्फ हैज द मीनिंग रिस्पॉन्स अबिलिटी, लेकिन हमने उसको सारा बाहर करके, तो इसमें शब्द में कितना सुंदर है कि आप किस तरह से परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए, लेकिन फिर कई बार हमें लगा कि कैसे हो सकता है।

0: ये मेरी जिम्मेवारी कैसे हो सकती है? आज विश्व में इतना कुछ हो रहा है, लेट्स से हम जहां रहते हैं वहां टेररिज्म है, लेट्स से मैं जहां रहती हूँ वहां अर्थक्वेक हो गया, वहां कुछ एपिडेमिक फैल गया, डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड? येस, मे बी इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोज हमें लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टेबल रहेंगे, जिनका पूरा ये ध्यान है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या हो रहा है, फिर भी मेरा अगला थॉट, मेरा अगला एक्शन, उसकी क्वालिटी मैं डिसाइड करता हूँ। वो अपने आप को परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जीवन में सिचुएशंस तो
1: आती रही है,
0: आने ही वाले हैं, लेकिन मुझे कॉन्शियसली अपना रिस्पॉन्स चूज करना है, ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That is why we said self first. जहां आप अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट बनाएंगे अब अगली बार कि मेरी कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको टॉप किससे करेंगे?
1: Self.
0: And that's why we said self, family, work. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक की तो परिवार अपने आप ठीक होगा, तो वर्क प्लेस अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे इनकल्केट करें, उसके लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने कई बार रिपीट की है, एंड दैट इज यू आर द क्रिएटर। ये भले अब जितनी बार बोलने से, बार बार बोलने से लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो औरों को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बार बार, हर रोज, हर पल ये याद रखना पड़ेगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, एक्शन, एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन, मेरे ये सारी जितनी है ये मेरी क्रिएशन है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा। अभी भी भले हमें ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जितनी बार भी हम सारा दिन में रिएक्ट कर जाते हैं, यू नो, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, मीन्स हम उस टाइम हम क्या कह रहे हैं कि कोई ना कोई और जिम्मेवार है, और ये जो मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना अंदर, जो मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका कारण कोई ना कोई और है। तो एक दिन के लिए इसको अगेन एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ले कि सारा दिन कॉन्शियसली ध्यान ही रखें, लेकिन जब भी रिएक्ट कर जाए, फिर भी रिएक्शन कुड बी एज सिंपल एज ये बारिश क्यों हो रही है, ये कोई बारिश का मौसम है, यू नो, समथिंग एज सिंपल एज दैट। Now, what I'm trying to do is
1: any kind of irritation, actually. Yes.
0: Yeah. Now, this is my discomfort, but I blame the weather because I'm trying to control that which is not in my control. Weather is not in my control. Lekin bar bar, kaisa mausam ho gaya? Kitni garmi hai? Kitni ye hai? Now, this is a series of negative thoughts. Hai, accept karo. जैसे ही accept कर लोगे, वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगी जितना आपको लगता है। तो इसके एक दिन के लिए चेक करें कि छोटे मोटे भी जो रिएक्शंस होते हैं, बड़े बड़े तो हो ही रहे हैं, उसको तो आप स्टॉप करके देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे भी अगर आप रिएक्ट करते हैं, देखेंगे कि हम किसको ब्लेम कर रहे हैं, मौसम को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को, परिवार को, किसी ना किसी को, या फिर उसको भी ब्लेम कर देते हैं। तो जैसे ही किसी को किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा हो गए, तो उस पल हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ एट दिस टाइम।
1: इनफैक्ट इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तब भी हम ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेवार हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: कोई और किसी, तो हम डिपेंडेंट नहीं हो जाते फिर किसी,
0: एब्सोल्युटली।
1: मतलब अगर हम देखें ये कि बहुत सुंदर कोई फूल देखते हैं, या बहुत सुंदर कुछ हम प्रोग्राम देख रहे हैं, या बहुत अच्छा नजारा कोई देख रहे हैं, और हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, या हमारे अंदर जो फीलिंग क्रिएट होती है, इट मींस उसकी जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना, मैंने क्रिएट किया।
0: एब्सोल्युटली, हर चीज तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, दर्द भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, लव भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं सो पावरफुल, कि आपको किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं।
1: तो मैं जो कुछ भी एक्चुअली फील करता हूँ, मेरी अपनी क्रिएशन है,
0: एवरी थॉट
1: व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि कुछ एक के साथ हम अच्छा फील, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ के साथ बहुत परेशानी वाली।
0: वो हम देखेंगे जब रिलेशनशिप्स में देखेंगे, कि वो भी तो मेरे अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना, उनके प्रति, मेरा आपके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, तब मैं आपके साथ उस

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज.
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM.
2: खुश रहो खुशियाँ बांटो.
3: शांति अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत. हमने जहां बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था. उसमें एक बात, एक ऐसी स्किल जो हमने समझी कि हमारे थॉट्स हमारे विचार वो बहुत पावरफुल हैं, हम उनके थ्रू उस ऊर्जा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं. बात एक और जो हमने समझी, उन्हें क्रिएट करने का मादा की शक्ति मेरे पास है, यानी अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो. हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 types ऑफ थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी ये पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नजर आते हैं. कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं. हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुशीलन. दोनों का स्वागत. ओम शांति. डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स आपने कहा, टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की. टॉक्सिक थॉट्स अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफरत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशन, उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है बल्कि ये सारी चीजें भी उनमें शामिल हो रही थी. डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो एग्जाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो जरूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती.
4: लेकिन फिर भी वह नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है. एक्चुअली जो नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए. उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो. एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है. जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्जाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. इसलिए क्या होना चाहिए कि भले एग्जाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूं, मेरे में क्षमता है. कहते हैं आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू. मैं कर सकता हूं, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी. अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. इसलिए यहां भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी.
3: हाउ विल आई नो वेदर माई कंसर्न और माई एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे पता चल पाएगा?
5: डिपेंड्स ऑन हाउ यू फीलिंग. हाउ आर यू फीलिंग, इमीडिएटली पता चलता है. कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस,
3: वो जो वो स्टमक में कुछ होना शुरू हो जाता है,
4: वो दिमाग में भी होगा.
5: ये तो फिजिकल लेवल पर है, पर अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है. यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल जाएगा.
3: कॉन्फिडेंट अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस पहले

0: पर काफी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा। रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव, तुरंत पता चल जाता है। जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग, और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरे परफॉर्मेंस पर असर आएगा, सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज, क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो,
1: बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, बहुत
0: चीजें, तो ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं। एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन फाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगे तो मैं ऑलरेडी यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगे, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूं, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज, ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूंगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर।
1: तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की, हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है?
2: वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है। कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम, भले वो कंपनी को फायदा होगा आपको तो लॉस होना है, तो इसलिए इस प्रकार के विचार भी टाइम वेस्ट है।
1: फिर हम क्या करें, मतलब हम सड़क पे जा रहे हैं, वो दिख रही है चीजें, तो हम पढ़ेंगे
2: नहीं, लेकिन तो आप और कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करिए।
1: अच्छा, पर वो फिर एंग्जाइटी नहीं होगी, वो फिर बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते जाना
2: है। प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अब जाकर के मुझे क्या करना है, और कोई काम करना है उसके बारे में कुछ सोचिए, तो वो एक्चुअली प्रोडक्टिव थॉट होगा, नहीं तो सिर्फ एड को पढ़ना हुआ तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात भी, लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ सोते बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा करो।
1: आई डू बी एंजॉय इट सो मच, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट, मीन्स वेस्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते हैं?
2: इट्स अ स्पाइस इन इट इन फैक्ट, और ये भी कहेंगे इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते हैं कि किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करके हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है।
1: नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स, खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड यू नो लाइक कहीं हमारी सेल्फ स्टीम को मजा
0: मेक्स मी फील सुपीरियर? सी, जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ, एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, और हम क्या गॉसिप, मतलब क्या कमजोरियां, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं। गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग, तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना मुझे फील होता है कि हाँ आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, सो आई एम अ नाइस पर्सन, तो दिस इज ट्राइंग टू यू नो स्टिम्युलेट माई सेल्फ टू फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल।
1: लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, यू नो जो थॉट्स आपको गुड फील कराए दे आर ओके,
2: नॉट एट समवन्स कॉज,
1: नहीं पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना,
0: एनर्जी तो गई ना,
2: वो एनर्जी बात भी जाएगी वहां तक।
0: हाँ, बात तो जाएगी लेकिन एनर्जी कितनी गई, और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी, अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको पांच लोगों के साथ शेयर किया, फिर पांच लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? पांच लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था, वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले, ये सारे सड़े हुए निकले, जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सी

0: need at every point कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा. फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस टूडे.
1: लेकिन मैंने कोई उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो. आई एम एक्चुअली गोइंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द गॉसिप पर्सन. आई एम जस्ट हैविंग फन.
2: इसलिए तो वेस्ट थॉट का ना, हम नेगेटिव नहीं कह रहे हैं. बोलो नेगेटिव एक सटल डिमार्केशन लाइन है, वो नेगेटिव हो जाता है इमीजिएटली. लेकिन फिर भी आइडियली एज यू आर सेइंग कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, तो भी तो टाइम वेस्टर हुआ. एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो.
1: वो बातें इतनी बोर क्यों लगती है? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं. अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट
0: बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपके बारे में बैठकर एक घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना एंड इट्स मेकिंग मी फील गुड. लेकिन जैसे ही अपने बारे में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर रही है इनसे, इनको ऐसे करना चाहिए. इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आजकल? देखो समाज में क्या हो रहा है. गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को. इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या क्या करना चाहिए.
1: क्रिकेट,
0: एक्टर्स,
1: फिल्म, तो इट मीन्स ये सब उस कैटेगरी में.
2: हाँ, सब वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है.
0: क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं
1: पर
0: है.
1: कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. इसी ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है.
0: तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी. वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा. इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें. अभी भी बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपनी भी करें. क्वालिटी विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है. उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है. उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज की उस पर भी तो फोकस हो सकती है. जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे. दिस इज वेरी वेरी सटल. लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही कितना फायदा कर सकते हैं. हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसके कितनी बातें कर लेते. अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहां पर आई फेल्ड टूडे, यहां पर आई कुड डू इट. नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज यूजफुल फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स यूजफुल फॉर इवन द अदर पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग. तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए. कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी चेंज हो गई एंड वो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, वो प्रोडक्टिव होगी. तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगी,
1: वो लर्निंग में आ जाएगी.
0: लर्निंग में आ जाएगी तो वो आपका अपना फायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन.
2: और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको जरूरत है. जैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, बोला आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज आई डोंट नीड इट. और भी कई चीजें है कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ? मेरे लिए वेस्ट थॉट है.
0: एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं. वो लोग वहां है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको यू नो जजमेंटल होते जाते हैं. संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का? वो संस्कार मेरा बन रहा है. तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती हूँ. दैट इज नॉट समथिंग विच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी.
1: क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी.
2: इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं, वहां भी ना कहना.
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ. अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, विल इट इफेक्ट मी?
2: यू डोंट लिसन. क्योंकि सुना तो है ना आपने. कई लोग कहते एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता. दोनों कानों से सुन रहे, अंदर जाते हैं.
1: इन्फॉर्मेशन जा रही है अंदर.
0: जा रही है. जो जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है. बहुत फिर जो आजकल हम कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी. इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे.
2: सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण.

0: सुनाते हैं कि सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं। तो सुकरात ने कहा, नहीं ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे। वो तीन फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुंच जाए तो जरूर सुनाना। का क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वो सत्य है। उसने कहा, नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं। तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है। कहा, नहीं नहीं साहब, तो बहुत बुरे समाचार है। तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची। तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है। और तीसरा फिल्टर है, क्या कोई काम की बात है? कहा, नहीं, ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा, मुझे नहीं सुनाओ। देखो, तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई।
1: सही बात है, सच्ची का फिल्टर। और आपने कहा कि
0: यूज़फुल और अच्छी बात,
1: तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट हाउस की। अब हम आते हैं, आपने कहा नेसेसरी थॉट्स एंड देन वी मूव ओवर टू राइट एंड
0: पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हाँ, नेसेसरी थॉट है कि भी कई काम आपको करने, स्नान करना है, खाना करना है, ऑफिस जाकर के काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज्यादा सोचो नहीं। से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे नेसेसरी थॉट्स, जो नेसेसरी कार्य कर रहे उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं।
2: मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट।
1: नेसेसरी
2: हो लेकिन अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो,
0: बिल्कुल जीरो,
2: तो वेस्टिंग एनर्जी।
1: अच्छा, एक और, अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है?
0: हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है। जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को कर लें।
1: लेकिन एक हमने सर्वे किया तब ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव? यू नो, मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ। जिंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव?
2: जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव सोच है। No, जिंदगी एक लड़ाई है, व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट? तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही
1: आपको युद्ध जीतने
2: सामने आएंगे, और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है। और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद। एवरी थॉट इज सो इम्पोर्टेंट।
0: पॉजिटिव इज लाइफ इज अ गेम,
2: लाइफ इज अ
0: जर्नी। इस प्रकार के थॉट्स हो तो उस समय पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सदैव पॉजिटिव सोचते, कई बार प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे। अगर वो अपनी एनालिसिस करें अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे थॉट्स है जिसमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो औरों पर डाउट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है। भले चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची, लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है।
1: आई मेट समबडी डॉक्टर पटेल जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बट ही डजंट वांट टू चेंज दिस।
0: एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट करी, मतलब इतना ही है उनके लिए, आगे तो कुछ है ही नहीं, परंतु आगे तो बहुत कुछ है।
1: लेकिन वो ये सोचते हैं,
0: ट्रस्ट नहीं करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है।
2: और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं। देयर इज नॉट अ जीरो थॉट, आई डोंट ट्रस्ट यू मीन्स आई डाउट यू। एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करते हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है? सभी से रिटर्न भी अगर मैं आपको डाउट करूं तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे? देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड ही और शी। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी, मैं अच्छा फील नहीं कर सकता। ये फर्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है।
1: बट ही फील, ही सेज दैट आई फील सेफ।
2: वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा। अगर हम देखें लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे। जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ

0: एवरेज हम क्या कर रहे हैं। तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम। एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है। एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी। ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें, बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अगर वो 50 में से कोई एक कुछ और कर भी देता है, यू हैव इनफ पावर टू फेस द सिचुएशन,
1: बिकॉज़ यू आर वेरी ऊर्जा और दुआएं,
0: यू आर वेरी फुल, यू विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन। एंड फिर आपको जो आप जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे, दैट माइट इवन हेल्प देम टू चेंज द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ।
2: 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं, हाँ, उनसे
0: it's
2: आपको सपोर्ट मिलेगा।
0: इट्स लाइक सेइंग कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इट्स लाइक दैट रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ
2: एक्सपीरियंस है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, समबडी हैज ब्रोकन दैट ट्रस्ट, और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया।
1: तो पर वो फील कम्फर्टेबल विद दैट,
2: नोबली कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं।
1: तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम?
2: अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है।
1: इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्व इश्यू
0: है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी। और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाएगा।
1: उन्होंने बोला मुझे, ही सेज कि नहीं है, तो तभी तो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है।
0: अब जिसके रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा।
1: तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए।
2: नहीं, उतना ही नहीं, पॉजिटिव तो एक तो सिंपल तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें। और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है, डिसएडवांटेज बड़ा है, तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले। कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले। और ऐसी परिस्थिति में तो मैं ये एडवाइस देता हूं कि उसको लिखो। सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है, क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा।
1: हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं
2: कर सकते हैं।
0: अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना, जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज
1: किसी लव्ड वन की डेथ में क्या पॉजिटिव है,
0: उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सी इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से। डेफिनेटली जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रहे हैं, मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका, उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं, आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल। सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी।
2: और बहुत सारी बातें कि इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दू।
1: अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा?
2: पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं थॉट सोच पाते, क्योंकि उसमें जो मूल चीज में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही, तो भी यह मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, और ये भी पॉजिटिव है। अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ

0: बेनिफिट होगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ।
1: लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। तो फिर ये अगेन
0: प्रेजेंट में रह रहे हो लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है
1: कि इसमें ही कुछ
0: मेरे सामने लॉस हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ।
2: उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे
1: हो, आपको हौसला दे रहे हो।
2: नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू। सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है। इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है। कोई सीन ऐसी होती है जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती है लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ। वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट कि इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड है। एम इज कि हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूं। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है। यू नो, छोटी सी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढू, नेगेटिव ही ढूंढू, तो वो सिचुएशन और भी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए। कई लोग ऐसे हैं कि सब चीजें भी पॉजिटिव हो रही होंगी
1: लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते,
2: नहीं उसमें उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा। एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का, अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का
0: और मान्यता बना लें। कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है। तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है। वैसे मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे।
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए। तो आज भी बात है कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे। क्या वो किसी भी तरह से यूज हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फर्क पड़ रहा था। ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूं या करती हूं। तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सिचुएशन कोई भी हो हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें, ये प्रयास करके देखें। क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अब इतनी ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे और बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम हंसो और हंसाया करो।
1: उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम।

0: संबंध जब हम तुम
1: हम बन गए हैं कलम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम तारा रंग।

0: उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व।

0: है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल दायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

काश के हम साइकिल होते, इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती पैडल होते, भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली।

एक शक्ल है इनविटेशन की। सड़कों पे परेड ये फैशन की, एक शक्ल है इनविटेशन की। गत कुछ भी बनाओ नेशन की, तुम जान हो उस जनरेशन की। जो दिल पे चलाती है गोली, जो दिल पे चलाती है गोली।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद मिळवा.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांती.
1: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
2: थैंक यू.
1: कल आपने जैसे कहा था लास्ट एपिसोड में कि सुबह सुबह की गिजा, सुबह का खाना जिस तरह इस बॉडी को देते हैं उस तरह मन को भी देना है. तो मैंने सुबह उठ के 4 बजे कोशिश की, लेकिन साथ में एक और भी किया नहीं, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का. पढ़ा था रोज, तो मैं 2-4 कप चाय पीता था, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पढ़ते फर्स्ट पेज टू एंड, और साथ में मतलब रिएक्ट भी करता था. आज ये हो गया, अच्छी चीज, आज वो हो गया, ये मंत्री ने ऐसा किया, औरत ने ऐसा किया, ये करप्शन, ये. तो आज मेरा मन ही नहीं किया.
2: ब्यूटिफुल. जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि थॉट्स जो हमारे हैं, बिकॉज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स चेंज करने हैं, कैसे चेंज हो, कितना अटेंशन कैसे रख सकते हैं कि हर थॉट आई चेंज करना है, तो उसके लिए हमें थॉट्स से भी एक स्टेप पीछे जाना होगा कि कौन सी चीज है जिसका प्रभाव थॉट पर पड़ता है, या कौन सी चीज है जो रॉ मटेरियल है जिससे थॉट्स क्रिएट होती है. और वो हमने देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फॉर्मेशन. जो कुछ हम सारा दिन में सुन पढ़ देख रहे हैं, इट्स गोइंग इन. जिस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, परिस्थिति आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगी एंड वो हमारी पर्सनालिटी बनेगी. सुबह के समय पहले 2-2.5 घंटे हमारी अब्सॉर्ब

0: एब्जॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई है, ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है उस चीज को। ये आज के समय में, जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर, क्योंकि हम में से मेजोरिटी का दिन, जिसके लिए अगेन हम कहेंगे नेचुरल, यू नो वी विल से इट्स नेचुरल टू रीड द न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम में से मेजोरिटी का दिन सुबह की अखबार, एंड आज तो सिर्फ अखबार नहीं, न्यूज चैनल टीवी पर, विच हैज अ डीपर इम्पैक्ट बिकॉज इट्स विजुअल। तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठकर हम सब अखबार और टीवी न्यूज देख लेते हैं और हम सुबह सुबह मन पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, वायलेंस, नेगेटिविटी, फियर, टेरर, ये क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने भर दी। फिर सारा दिन में आप कितनी भी कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, वो डिफिकल्ट होगा क्योंकि सुबह का भोजन क्या था, और ये एक दिन या दो दिन का नहीं है।
1: बट ये इसका प्रूफ ये है जस्ट द ऑपोजिट जो आप कह रहे थे।
0: हाँ?
1: मैंने जब सुबह मेडिटेशन किया 4 बजे
0: राइट,
1: और अमृत वेले अच्छी अच्छी बातें मन में डाली, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छी बात करने का मन नहीं करता है, वैसे अच्छी बात, अच्छी गजा मन को, अपने आप को देकर मेरा मन ही नहीं पड़ा। देख के मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह मन नहीं कर रहा है।
0: अब आपने जैसे आज मेडिटेशन किया, उसके बाद आपका मन नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन इसको अब आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना ले कि सुबह अखबार में पढ़ूंगा ही नहीं। यू नो लाइक अ चेंज इन लाइफस्टाइल, जब हम कह रहे हैं डाइट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि अगर रिजल्ट में डिफरेंस चाहिए तो रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना होगा। अगर हम अपने आप के साथ आज ये पक्का कर लें कि सुबह के 2-3 घंटे में हम न्यूज, अखबार, टीवी न्यूज चैनल, इसको अपने अंदर नहीं भरेंगे, मीन्स नो इनटेक ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। हर एक ये आज पक्का कर ले अपने आप के साथ कि जितना अपने मन को क्लीन रखना चाहते हैं, उतना दिन में न्यूज का समय थोड़ा सा लेट करते जाएं, एटलीस्ट 1-3 आवर्स में नहीं,
1: लंच के बाद।
0: ओ यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट के लंच के बाद। बहुत लोगों ने इस चेंज को करके देखा है और कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले पढ़ने की बजाय अब हम शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ लेते हैं, या कार में सुबह जब ड्राइव कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए तब पढ़ने की बजाय शाम को पढ़ना शुरू करते हैं। इट्स अ बिग शिफ्ट। व्हाई? सुबह ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन था, आप जो भरेंगे इट विल जस्ट सोक इन, शाम तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया। जो फर्स्ट लेयर है इधर दिन की, वो फाउंडेशन है पूरे दिन की। अगर फाउंडेशन लेयर में नेगेटिव डाल दिया तो फिर वो पूरा दिन वर्क करेगा। अगर सुबह के लेयर में डालने की बजाय शाम को लेयर डाली न्यूज की, तो तब तक ब्लॉटिंग पेपर तो बाकी बहुत सारी बातों से सैचुरेट हो गया, शाम को जो डाली वो इतनी गहरी नहीं जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखना है, शाम को पढ़ लें, रात को ना पढ़े।
1: हाँ।
0: रात को ना पढ़े, शाम को पढ़ के माइंड को फिर उस बातों से हटाना, बिकॉज सम पीपल विल रीड इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप।
1: न्यूज भी सुन सकते हैं।
0: हाँ, न्यूज मतलब दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन थॉट्स, सुबह उठते ही एंड रात को जस्ट सोने से पहले। सुबह उठते ही जो भरा वो पूरे दिन पर असर करेगा, रात को जस्ट सोने से पहले जो भरा वो पूरी रात मन पर असर करेगा। सो वी हैव टू टेक केयर। एंड एक्चुअली आज जैसे आपने कहा रात को न्यूज, यू नो इट्स द प्राइम टाइम न्यूज चैनल कौन सा है, अर्ली मॉर्निंग न्यूज 6 o'clock एंड लेट इवनिंग 10 o'clock, ये प्राइम टाइम है एक न्यूज चैनल के लिए, विच मीन्स हम में से मेजोरिटी ये दो टाइम पे न्यूज सुन रहे हैं, 6 o'clock एंड इवनिंग 10 o'clock, दोनों टाइम्स हमारे लिए डैमेजिंग है। करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम में चेंज करना है सिर्फ। लास्ट लेयर जो भरी, अगर वायलेंट थॉट्स वापस इन्फॉर्मेशन भरी, फिर पूरी रात वो टर्बुलेंस चलेगा। वी आर नॉट रियलाइजिंग टूडे, लेकिन आज जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस 24/7 जो न्यूज चैनल्स और कितने सारे न्यूज चैनल, वही सीन बार बार बार बार जब रिपीट होता है एंड उसको हम इनटेक करते हैं, एंड ऑफकोर्स मीडिया भी एक इंडस्ट्री है तो वो भी किस तरह के सीन्स दिखाएंगे और किस तरह से उसको करके दिखाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेज करते हैं
1: और ड्रामेटाइज कर देते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों में जो

0: एक नॉर्मल बात करेंगे तो अजीब सा लगता है, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, छोटे से सीन को भी हाईलाइट कर देते हैं।
1: क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है, जब 100 चैनल्स है, जब सिर्फ एक न्यूज चैनल था, एक दूरदर्शन न्यूज चैनल था, तो दूरदर्शन जो दिखाएगा हम बैठकर देख रहे हैं, लेकिन अब जब इतने न्यूज चैनल है तो कौन सा न्यूज चैनल पकड़ कर रख सकेगा हमें? इट हैज टू होल्ड द माइंड बेसिकली। जैसे मूवी कौन सी पकड़ के रख सकती है जो हमारे मन को कम्प्लीटली कैप्चर कर ले,
0: सारी आंख को, कान को, फीलिंग्स को, इमोशन को
1: पकड़ ले। मीडिया क्या करता है, व्हाट डज द एंटरटेनमेंट न्यूज इंडस्ट्री डू, हमारे सोचने की शक्ति बंद हो जाती है उतनी देर। क्यों हम मूवी देखकर रो सकते हैं? टेलीविजन, मूवी, ये सारी जो पूरी इंडस्ट्री है, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली खत्म करती है। ये खत्म करती है क्योंकि जब हम इसके सामने बैठते हैं और डिटैच होकर नहीं बैठते, इट डजंट मीन कि न्यूज नहीं देखनी, मूवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, डिटैच होकर देखना है। हम क्या करते हैं, हम जिसको हम कहेंगे, हम उसमें घुस जाते हैं, हम इमोशनली उसके अंदर घुस जाते हैं, विच मीन्स जो सीन दिख रहा है उस सीन के ही मेरे थॉट्स चलते हैं। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। उधर अगर कोई रो रहा है,
0: आई आइडेंटिफाई,
1: नॉट ओनली आई आइडेंटिफाई, नो नॉट नेसेसरी आई आइडेंटिफाई, नहीं, मैं उसी क्वालिटी के थॉट क्रिएट करता हूँ, विच मीन्स वो सीन मेरे ऊपर हावी हो गया।
0: जैसे मैं एक सपना देखता हूँ, तो सपने में अगर मुझे फियर आए और तो घबराहट और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, तो मैं अगर जाके देखो तो वाकई रियल लाइफ में भी हो जाता है।
1: लेकिन वो सपना तो यहाँ क्रिएट हुआ ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट आ गया। अभी ये तो सीन सामने क्रिएट हो रहा है, ये तो मेरे टीवी स्क्रीन पर ही क्रिएट हो रहा है ना। सपना तो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वो सीन तो मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। लेकिन ये सीन तो मेरे अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सीन बाहर क्रिएट हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी डीप। क्यों आज बच्चों की भी इतनी यंग एज से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, एंड क्यों हम इस डायनामिक में पड़ रहे हैं कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव, परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव स्टार्ट्स विद द मीडिया इंडस्ट्री। पहले परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, पहले टीवी, मूवी और सीरियल का मुझ पर प्रभाव है। हम उधर बैठते हैं और उतनी देर हम कुछ और नहीं सोचते हैं, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम सोच पाते हैं, हमें रुलाना चाहते हैं हम रो देते हैं, हमें हंसाना चाहते हैं हम हंस देते हैं, मतलब हमारी थॉट कम्प्लीटली उसके साथ है। दिस वी हैव टू प्रैक्टिस कि टीवी देखते समय, अगर टीवी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तब लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे। टीवी देखते समय,
0: मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते
1: हैं। नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट
0: कि अगर कोई इंसान कुछ मुझे बोल दे और रुला सके, हंसा सके, उसने मुझे डांट दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे बुरा बोल दिया, छोटा बोला, बड़ा बोला,
1: हावी हो गया,
0: यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी,
1: क्योंकि वहीं से क्रिएट हुई थी। इसीलिए वाई मोर स्ट्रेस हैज गॉट क्रिएटेड विद 24/7 टेलीविजन। दिस इज वेरी सटल, क्योंकि उसमें हम इतना खो गए हैं, इतना घुस गए हैं कि उतनी देर मन अपने सोचने की शक्ति को सरेंडर कर देता है, सरेंडर कर देता है, बोलता है करवाओ मुझसे जो करना है। अब इससे फायदा क्या होता है लोगों को, जो हमें फील होता है कि मैं सारा दिन परेशान ऑफिस के काम से, वो थॉट्स मेरे अंदर चल रही है, या हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, वो चल रही है, टीवी ऑन कर दो। जैसे ही टीवी ऑन कर दिया, मेरा सोचने का काम बंद, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक, नाउ दिस विल मेक मी थिंक। तो क्या हुआ, मैंने अपनी चीज को सरेंडर कर दिया और दूसरे को कहा, मतलब मीडिया को कहा, टेक ओवर मी, दिस इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन। लेकिन उससे हुआ क्या, मेरा मन इस प्रैक्टिस में चला गया कि सिचुएशन, सीन मेरे मन के ऊपर हावी हो सकता है। अब जो सीन हो रहा है, हमें मालूम है कि वो सच भी नहीं है, वो स्टोरी है, वो कल्पना है, किसी और की है, तो भी मन उसके अंदर चला जाता है। जब ये होने लगेगा, तो जब एक्चुअल सीन्स क्रिएट होंगे, जो जीवन में मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं, तब मन उसके प्रभाव से बाहर कैसे निकलेगा। आज से ये होमवर्क कि टीवी देखते समय, न्यूज देखते समय, सब कुछ देखते हुए हमें साक्षी होकर देखना है। अगर जीवन में साक्षी बनना है, पहले टीवी के सामने साक्षी बनना पड़ेगा। न्यूज देखना है, लेकिन उतना ही गुस्सा नहीं क्रिएट करना जितना उस सीन में

0: था, लूज बॉल दे दिया।
1: लेकिन साक्षी होकर ये प्रैक्टिस है, दिस विल हैव टू बी डन इफ आई वॉन्ट टू बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इफ आई कैन नॉट बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन फ्रंट ऑफ अ टीवी स्क्रीन, हाउ विल आई बिकम द मास्टर ऑफ माई माइंड इन अ रियल सिचुएशन।
2: मजे की बात ये है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है।
1: कौन कंट्रोल में नहीं है?
0: क्रिकेट मैच कोई और खेल रहा है, दिखा रहा है कोई और है,
1: परिस्थिति भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वहां भी तो क्रिकेट मैच ही
0: है, उसके कंट्रोल में आ गया।
1: सो दिस लेट्स प्रैक्टिस, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे डिटैच होकर। इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि जब हम न्यूज सुन रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है, ये गुस्सा और दर्द क्रिएट करने की बजाय एक मिनट के लिए उसी टाइम जब वो न्यूज सुन रहे हैं, साइलेंस में बैठकर उन लोगों को पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं जहां कुछ हुआ है। अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं टेरर अटैक हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात हुई है, हाय क्या हुआ, बेचारे अब क्या होगा, ये थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है। लेट मी सिट इन साइलेंस, कनेक्ट टू गॉड एंड गिव देम वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेशन, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ताकि मैंने क्या प्रैक्टिस किया, सामने हलचल है, सामने हलचल है, लेकिन मेरा मन
0: ब्लेसिंग्स दे रहा है
1: सही स्थिति बनाकर, एंड विच इज यूजफुल। कहीं दर्द है तो हमें दर्द को दर्द नहीं भेजना है, हमें दर्द पर शीतलता भेजनी है, शांति की वाइब्रेशंस भेजनी है। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत एक तरीका है ये करने का, कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है, नेचुरल कलामिटी या मैन मेड डिजास्टर, तो सभी भाई बहने इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन, अगर एक जगह कहीं दर्द है, टेरर है, फियर है, केओस है, डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली ऑफ दोज अफेक्टेड, देयर इज सो मच पेन, हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, खाना भेजेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंडिंग पीस एंड पावर?
0: दुआ भी भेज सकते हैं।
1: वही पीस एंड पावर, दुआ वही है।
0: लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं, ब्रह्मा कुमारी से, अगर 5-10 लाख मिलके अगर दुआ करें,
1: हाँ?
0: और ब्लेसिंग्स भेजें,
1: राइट?
0: इतना मतलब,
1: बट अगर हम सब करें तो वी कैन ऑल डू दिस। अब इससे होगा क्या, दिस इज अ वेरी डीप साइकिल। क्या होता है, अभी अगर हमें कोई न्यूज मिलती है कि यहाँ ये इतना बड़ा, सपोज सी नेचुरल कलामिटी फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ, नॉट इन आर कंट्रोल, लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहाँ होता है, जहाँ किसी ने बहुत हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह, अब इसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं इस खबर को, एंड मिलियंस ऑफ पीपल क्रिएट हेट्रेड वाइल वॉचिंग इट। नफरत, गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्रिएट करते हैं, हम इनको मार दें, हम ये करें, कैसे मारें इनको, यू नो द काइंड ऑफ थॉट्स। अब क्या हुआ, वाइब्रेशन कौन सी फैल गई सारे?
0: वायलेंस,
1: हेट्रेड। व्हाई सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट ओवरऑल? क्योंकि एक न्यूज एंड मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग इट थ्रू आउट द डे एंड क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एंगर। एक जिसने न्यूज देखकर वो क्रिएट किया, उसका नुकसान, मैंने हेट्रेड नफरत क्रिएट की, जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी, उनका भी नुकसान। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी पूरी वातावरण की,
0: पहले अपने घर में
1: पूरा, दैट्स व्हाट ना, इट
0: घर के बाहर,
1: इट गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो। अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे, एक व्यक्ति हेट्रेड क्रिएट करे, 10 क्रिएट करे, 100 क्रिएट करे, बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियंस देख के क्रिएट कर देते हैं, द वे इट विल स्प्रेड, तब इतने लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर। अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते, क्या हो रहा है, लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में, तो पता तो चलेगा ही ना।
0: जैसे आपने कहा था, हाउ यू रिस्पॉन्ड।
1: Now let me ask myself, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर, पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेट्रेड से उनके साथ ऐसा किया, वॉट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं,
0: हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं।
1: अगर हम खबर सुन रहे हैं कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया या टेररिस्ट ने

0: न्यूयॉर्क में ये अटैक किया, तो उन्होंने उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया, लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया, तो हेट्रेड हमने भी हेट्रेड। अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति, पहले जिनके प्रति हुआ, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं, बीमार हैं, जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ, जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में, उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है, विच मीन्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेट्रेड। इफ आई क्रिएट हेट्रेड, आई एम सेंडिंग मोर हेट्रेड टू दैट प्लेस। इफ आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें जैसे आपने कहा दुआ, दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें, जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा। कम्प्लीटली कम आउट ऑफ द सीन एंड क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड पावर, गॉड गिव देम लॉट्स ऑफ लव, पावर एंड पीस एट दैट टाइम, नॉट ओनली टू द वंस विद हुम इट हैज हैपेंड, जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको वाइब्रेशन नहीं देने, जिन्होंने किया वो कितनी हेट्रेड से भरे हुए थे, उनको भी शांति, उनको भी शांति, उनको भी करना, सबको करना। अब इससे क्या होगा,
1: विक्टिम्स को भी,
0: विक्टिम्स फैमिलीज, जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है, इट्स अ होल केओटिक सिचुएशन ना, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो
1: ये, मतलब आप हमें ये तो बताइए ना किस तरह भेजे आम आदमी,
0: किस तरह भेजे, आप बैठ जाए एक मिनट, कॉन्शियसली करना होगा, एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज करूंगा अभी सबके लिए, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस। देर आर पीपल इन पेन अराउंड अस, वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम एवरी डे, हम ये रोज कर सकते हैं 5 मिनट। आप बैठे एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि आई एम अ पीसफुल सोल, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर, शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, प्रेम और शांति सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है, बहुत दर्द में है, नफरत से भी भरे हुए हैं इस टाइम, गुस्से में भी है, तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है, पानी भेजना है, तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ। उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें, जो न्यूज में देखा है ना वो सीन यहाँ पे फिटेड है, उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है, एक्सीडेंट है, बहुत हुआ है, लेकिन उस सीन में ना घुसकर, सीन से बाहर रहकर, लेकिन उन सब आत्माओं को
1: पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं, परमात्मा से शक्ति लूं और शक्ति चारों तरफ फैलाऊं,
0: करें ये
1: 5 मिनट की शक्ति,
0: 5 मिनट
1: सहन शक्ति,
0: I the soul sending vibrations of peace to the soul। जैसे ये किया खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, नफरत नहीं क्रिएट करेंगे, नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशन हेट्रेड की है, लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव। जैसे ये क्रिएट किया पहले खुद की स्थिति, वाइब्रेशन कौन सी भेजी, ये वाइब्रेशन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं वहां पहुंचती है, उनको जिस दर्द में वो हैं उस समय कुछ राहत मिलती है, शक्ति मिलती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेट्रेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल वांट पीस, वी ऑल वांट पीस,

कैसे छुपाऊं अपना सुलगना किसको दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं आंखें क्या क्या देख रही है दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं आ जा रे आज जरा आ

के आए जरा आंखों से दिल में समा आ रे आ जरा लहरा के आए जरा आंखों से दिल में समा आज जरा आ लहरा के आज जरा आ

0: बालियों के बगैर कान कितने सूने सूने लगते हैं।
1: यहाँ भी आ पहुँचे?
0: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
0: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
0: कहिए क्या सेवा करूँ?
1: हाँ चाहिए।
0: जरूर, ऐसा हाथ पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्चे मोतियों का सफेद हार, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से झूले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
0: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
0: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरणें सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का देवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आपकी जुबान है।
0: अब मेरी जुबान से बढ़कर आप हैं।

ना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की बातियों में बिन यार कैसे जीना।

के साए, लेकिन साजन तुम नहीं आए। ढलते जाए शाम के साए।

बस अब वो आई जाए, चलते जाए शाम के साए।

पसीने पा पसीने सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे पा पसीने पा पसीने सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला में तो साहब बन गया। Attention! Salam et

0: तेली
1: यह गंगू तेली
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा हम साला बदलेगा।

शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशुकाना देता है प्यार का पैमाना करता है सबको दीवाना ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज मशु

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी परियां।

में जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप। हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे खाऊं सनम मैं दिल बहार की। मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला है दिल मंजिल है प्यार की।

गया कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। जाकर लौट जाता

कहां से आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश बैंड आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा

ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ನಂದನಾಲ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಗುಣ ತುಲಾಲ

चलो जही दूध मलाई, जही दूध मलाई ले चलो।

0: गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन
1: दिल पर, दिल पे तू

तो सफर लंबा तुझे होने वाली बरसात है, फिर साथ अकेली लड़की, फिर साथ अकेली लड़की, दिल कैसे कोई संभाले।

समल सुर पकड़ के धीरे से जाना, धीरे से जाना खटियनू।